परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 855-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उत्ते

ऐसा पेश कर रहा हूं जनाब अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहां तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फर्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फर्क है।

मुलार में मेले में अकेले फिरी बाजार सर में कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना मैं जमला पगला दीवाना

छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं कहती यमला पगला दीवाना हो रहा।

हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: चेक करने देने की एन्यूरिज्म की निशानी है और अल्टीमेट किसी वेले ए फट भी सकता है। तुसी किसी नू ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहिंदा है या तुहानू नहीं पता ते तुसी दौड़ना चाहते हो तो दौड़े हो तो किसी वेले कोई एमरजेंसी हो सकती है, किते तैनू सडन छाल मारनी पैगी ते कुछ ऐसा हो सकता है, एक्सीडेंटली कोई भी चीज ऐसी हो सकती है। आम तौर ते की हुंदा है वड्डे बंदे दे बच्चे हुंदे कि नहीं वो ढिड ते चढ़ जांदे ने छाती ते चढ़ जांदे ने, जे किसे नू एन्यूरिज्म वगैरा हो गया उत्ते टप्पिया तो एकदम ऐसा हो सकता है। वो एन्यूरिज्म जिहड़ा आ इहनू असीं ब्लंट इंजुरी दे तौर ते लै लैंदे आ।
1: डॉक्टर साहब कई बार है ना लेटली या पिछले 15-20 साल दे विच जिहड़े ना कई प्लेयर देखे वो खेलदे खेलदे ना उत्थे कॉलेजां दे भी वड्डे प्लेयर आ जां दूसरे आ खेलदे खेलदे डिग पैंदे, उन्हां नूं मेरा ख्याल शायद इदां दी कोई होनी
0: है। जी साहब ओ जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो ओ कहिंदे ने एनोक्सिया।
1: ओके,
0: एनोक्सिया ऑफ ब्रेन जो बहुत ज्यादा तेजी नाल दौड़दे हो करदे हो खेलदे हो ते तुहाडा शरीर अकस्टम्ड नहीं है ओहदे मुताबिक, ओहदा मतलब ए आ कि बेशक कुदरत ने प्रबंध कीता है कि दो कैरोटिड आर्टरी एस एओर्टा विचों निकल के ब्रेन नूं खून सप्लाई करदियां ने, लेकिन जदों तुसीं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करदे हो बहुत, क्योंकि आम तौर ते प्लेयरां नूं खेलदे खेलदे ऐसा कुछ हुंदा है,
1: हां जी बिल्कुल,
0: जोश नाल ओह खेल रहे ने और उस टाइम ते जिन्नी तुहानू ऑक्सीजन दी जरूरत है ओनी नहीं जा रही
1: जी,
0: और एदे करके एकदम उन्हां नू अनेर जिवें अखां गे आ जांदा है, बैठ जांदे ने या डिग पैंदे ने, ए सधारण गल आ, फिर रिकवर कर जांदे ने, लेकिन अगर उन्हां उस समय दे विच प्रेशर इन्ना ज्यादा वध गया ते मैं तुहानू दस्या सीगा भी ब्रेन दे विच जिहड़ा खून दी सप्लाई करन वाला सारा जाल विछिया होया ना सर्कल ऑफ विल्स बहुत ही बरीक जिवें कह लो रतवाला कहने नी वाला वर्गियां बरीक बहुत बरीक खून दियां नाड़ियां दा एक जाल विछिया होया आ और ओहदे विच बहुते प्रेशर दे नाल अगर खून जाना शुरू होया ते ओ फट सकदी, जदों ओ फट गईयां ते फिर सप्लाई तां हो नहीं रही, ऑक्सीजन खत्म हो गई, अल्टीमेट इस तरह की कंडीशन आ सकती है ते ओ आम तौर ते जिहड़े प्लेयर वगैरा नूं इस तरह की सडन होंदी है ओहदे पिछे कहने तुसीं कह सकदे हो ब्रेन हैमरेज, उन्हां नूं ब्रेन हैमरेज हो गया, अचानक अखां अगे नेर आ गया, बेहोशी एकदम आ गई, ओह रिकवर हो जांदी है। ओहदा मतलब ए आ कि इस तरह की कोई रैप्चर वाली गल तां नहीं हुई पर इन्ना होया भी टैंपरेरी तौर ते ऑक्सीजन पूरी नहीं हुई जिन्नी ब्रेन नूं चाहीदी सी सारे शरीर नूं कंट्रोल करन लई और इस करके बेहोशी आई सी, पर जदों बंदा डेथ ही हो गई इहदा मतलब है भी कोई जिहड़ा ओ सर्कल ऑफ विल्स दे विच बनाड़ियां सीगियां ओ फट गई है, फटन करके ओ सप्लाई हो नहीं रही, सारा कुछ फेल हो गया, ठीक है
1: जी, तो
0: इस तरह करके भी हुंदा है। कुछ लोगों नूं ऐसा हुंदा आ कि जदों तुसी बहुत तेजी नाल दौड़दे हो ते उस हिसाब दे विच इन्नी स्पीड बड़ा सकिंटां दी फ्रिक्शन है कि वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल विचों खून निकलिया असेंडिंग एओर्टा विच गया और इहदी एक तरतीब है गई है कि एक मिंट दे विच 72 तों 80 बार नॉर्मल ते चलदा हैगा, पर जदों तुसी खेड रहे हो ओह एकदम 200 तक भी पहुंच सकदा है, 140-150 तक भी पहुंच सकदा है, और किसी हालात दे विच ओ जिहड़ी कोरोनरी आर्टरी हैगी है ओ फट भी सकदी है और ओ फट गई ते ओ हार्ट अटैक हो गया या सडन इस तरह की गल हो गई। सो इस तरह करके बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते ने जिन्हां दे करके ए जिहड़ी प्रॉब्लम आ खेडदे खेडदे लोकां दी डेथ हो जांदी है, ऐसी संभावना हैगी। और मैं एक गल अगे भी कही सी बई एहो जिहियां गल्लां आम तौर ते सडन नहीं हुंदियां, चाहे आ इस तरह के लोग जेडे खेडन वाले ने रेगुलर खेडन वाले ने उन्हों का रूटीन चेकअप नहीं होया, रूटीन मैं दसिया सीगा कि कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम हैगी है जिहड़ी फोरामिनोवल दी हुंदी है, इसे तरह कंजेनिटल टाइप दियां कई ब्लड वैसल्स दियां प्रॉब्लम्स हुंदियां ने जिन्हां नूं असीं इग्नोर कर दिंदे आ, पर बच्चे खेडदे ने खेलना शुरू कर दिंदे ने और अल्टीमेट इहो जी घटना उहनां नाल वापर जांदी है। और इसे तरह ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हुंदा है कि मैं साहब एक असी

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हास्से खिलारदा।

0: ये गोला चतुर
1: एक पैर है ना, या गोला बोला या चतुर बोला।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये भुसत जात, अपने ही जाल में फसत जात, हम मरत

0: लगाता आहा मोनिका ओ माय डार्लिंग। एवी उन्होंने बाइक किया
1: बहुत सुना करे बहुत सुना करे
0: और उन्होंने गीत सीखे बड़े हिट गीत ने उन्होंने।